सम्झनुहोस् केडीसी जनरल अस्पताल, सम्पर्क नम्बर 01-4985-910, 01-4985-911। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।

0: को हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस की अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।